ढूंढो, यहाँ अल्लाह कह रहा नहीं, हज़रत इब्राहिम की पर्सनालिटी इतनी मोतबर है, रिस्पेक्टफुल है, ऑथेंटिक है कि इब्राहिम को देखो और दीन को फॉलो करो। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वत्तबअ मिल्लता इब्राहिमा हनीफा, ये वो दीन है जिसको तुम्हें पैरवी करना है, जिसको फॉलो करना है, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है, जो हक का दीन है, जो हक के रास्ते पर चलने वाला दीन है, नजात की तरफ ले जाने वाला दीन है, जो बातिल की तरफ इनवाइट नहीं करेगा, बातिल की तरफ तुम्हें झुकने नहीं देगा, उस मिल्लत और उस दीन की पैरवी करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के आखिर में रीज़न बताया क्यों हज़रत इब्राहिम को फॉलो करें, क्यों हज़रत इब्राहिम के दीन की रिस्पेक्ट करें, क्यों हज़रत इब्राहिम को नमूना करार दें, इसलिए कि वत्तखदल्लाहु इब्राहिमा खलीला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम को अपना दोस्त चुना है। दोस्ती बहुत ज़रूरी है, दोस्ती का पैगाम दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के चाहने वाले और अल्लाह के दोस्त हो जाएं, लेकिन हज़रत इब्राहिम का कैरेक्टर इतना बुलंद था, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बउनवान दोस्त सेलेक्ट किया है। वत्तखदा लाहु इब्राहिमा खलीला, कितने अनबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इस खिताब से नवाजा है, कभी किसी और खिताब से नवाजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्किरा है कि हज़रत नूह को सफ़ीयुल्लाह कहा जाता है। क़ुरान मजीद में हज़रत मूसा का तस्किरा, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला से बात करने वाले, कंटीन्यूस गुफ्तगू करने वाले का तस्किरा मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह के नाम से याद किया गया है कि ये स्पिरिट ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के आपको पैदा किया। और हमारे नबी, आखिरी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने हबीबुल्लाह के नाम से याद किया कि ये भी अल्लाह के दोस्त हैं। तो हज़रत इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला ने सेलेक्ट किया एज ए दोस्त, दोस्ती का मेयार बताया। हमारे यहाँ दोस्ती मफाद की दोस्ती होती है, मतलब है तो दोस्त है, मतलब नहीं तो दोस्त नहीं है। जेब गर्म हो तो बेहतरीन दोस्त है, जहाँ जेब खाली होती नज़र आए तो कोई दोस्त नज़र आने वाला नहीं है। फेसबुक पर 5000 से ज़्यादा दोस्त आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर परेशानी आए तो कोई दोस्त इंसान का फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यहाँ कुरान जो मेयार बता रहा है दोस्ती का, वो ना मफाद है, वो ना मतलब है, यहाँ दोस्ती का मेयार दीनदारी है। दोस्ती का मेयार अल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते पर चलना है। जो भी अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, जो टिक जाते हैं वो सदीक बन जाते हैं, जो मंजिल तक पहुंच जाते हैं वो खलील बन जाते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए एक उनवान, नमूना और उस्वा बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बउनवान खलील इंतखाब किया। दोस्ती बग़ैर क्राइटेरिया के नहीं, दोस्ती बग़ैर मेयार के नहीं है। कुछ खूबियाँ हज़रत इब्राहिम में जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेलेक्ट किया। अगर आप रिवायतों को देखेंगे, पहली खूबी जिसकी तरफ इशारा किया है हमारे कमेंटेटर्स ने, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस का सहारा लेकर, क्यों हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा है। पहला रीजन फरमाते इन्नमत्तखदल्लाहु इब्राहिमा खलीला लअन्नहु लम यरिद अहदन वलम यसल अहदन कत्तु गैरल्लाह। एक सिफत हजरत इब्राहिम में पाई जाती थी, जो भी हजरत इब्राहिम के घर के दरवाजे पर आया कभी हजरत इब्राहिम ने उन्हें खाली नहीं लौटाया। किसी साइल को, किसी फ़कीर को, किसी नीडी को अपने घर के दरवाजे से खाली नहीं लौटाया। जो अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के बंदों में खर्च करते हैं वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं, वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। दरहकीकत यही है कि जब बंदा आता है किसी के दरवाजे पर, वो अल्लाह का एम्बेसडर होता है, वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है। बाज़ रिवायतों में लिखा हुआ है अल्लाह खुद उन्हें भेजता है किसी के दरवाजे पर, जाओ इस दरवाजे पर जाओ, गोया वो अल्लाह का दिया हुआ माल उन फ़कीरों में जब डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, शेयर करने लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत पसंद करता है। हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी में देखा, जो भी आया आपके घर से खाली हाथ नहीं गया। और ख़ुद हज़रत इब्राहिम की आदत ये थी कि आपने मांगा हमेशा तो अल्लाह से मांगा है,
وَلَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا قَطُّ غَيْرَ اللَّهِ، کبھی بھی آپ نے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جو آیا دروازے پر اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔

तबा न कहने बिना पर उसे घर से निकाल दिया। जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ, जाओ तलाश करो, वो मेरा बंदा है, तुम्हारे लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम है, मैं राज़िक दोनों का भी हूँ, राज़िक मुस्लिम का भी हूँ, राज़िक नॉन मुस्लिम का भी हूँ। नॉन मुस्लिम को जो रिस्क मिलता है किसी और कारखाने से नहीं मिलता, नॉन मुस्लिम को जो रिस्क मिलता है वो अल्लाह ही के दरबार से मिलता है। हज़रत इब्राहिम दौड़े उसके पीछे, उसे माफ़ी मांगी, माजरा चाहिए, आओ मेरे दस्तरखान पर बैठो। जब वो बूढ़ा बैठने लगा तो उसने पूछा, एक फ़िलासफ़ी बतानी थी।

बच्चों को एनरोल कराएं, अपने बच्चों को भेजें अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्कॉलर्स, दोज हु आर विजिटिंग फ्रॉम कौम. इंशाअल्लाह बेहतरीन गाइडेंस मिलेगी, बेहतरीन मौका है हॉलीडेज़ को फुलफिल करने का, हॉलीडेज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का, और इस्पेशली जब मुहर्रम और सफ़र के अय्याम हैं तो यहाँ पर इल्म हासिल करना, सोचना और अहल बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. आज के ज़माने में ख़ुसूसी तौर पर जब बच्चों की फेथ और बच्चों की बिलीफ पर अटैक्स होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना और उनको शील्ड बनाना हम सब की हमारी ज़िम्मेदारी है. इंशाल्लाह उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें. अभी जाइएगा और एनरोल कीजिएगा. और दूसरा ऐलान ये कि मैरिज एंड सपोर्ट सब कमेटीज़ की जानिब से इंशाल्लाह स्पाउस सेलेक्शन का वन डे सेमिनार रखा गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अदीम शिराज़ी. इंशाल्लाह स्पाउस सेलेक्शन के जो उसूल हैं, जो तरीक़े हैं, जो जिस तरह अपने लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करना है उसके तरीक़े सिखाए जाएंगे, और उसके आज की जो परेशानियां वो बताया जाएगा. इंशाल्लाह उस ख़ास तौर पर ख्याल रखें. ये 7 जून को है, इंशाल्लाह वन डे सेमिनार है. सुबह ये शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा. तमाम भाइयों और बहनों के लिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए ओपन है. जो लोग एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए, जो प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन प्रोग्राम होगा. इसको भी एनरोल करें, रजिस्टर्ड करें. इंशाल्लाह लिमिटेड सीट हैं, तो इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को कहें कि वो आएँ और बेहतरीन मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाने हासिल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह. इसलिए कि स्पाउस सिलेक्शन में ज़रूरी है कि हम एक ही इख्तियार है हमारी ज़िंदगी में, हम अपनी बीवी को सेलेक्ट कर सकें, लाइफ पार्टनर को. वो भी इख्तियार गया हाथ से तो फिर गया, तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है. किसी ने अच्छा जुमला कहा, ये शादी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स की तरह है, पॉजिटिव और नेगेटिव. स्पाउस सिलेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर की तरह है, सही जुड़ गए तो ज़िंदगी में लाइट है, अगर सही जुड़ नहीं पाए तो फिर फाइट है. तो फिर वहाँ पर जब शॉक्स लगेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी के तार सही नहीं जोड़ेंगे तो फिर ज़िंदगी भर शॉक्स में गुजारनी पड़ेगी. बेहतर है कि इंसान सेलेक्ट करने से पहले ये सोच ले किसका इंतखाब हो रहा है, क्या उसका इरादा है, क्या उसकी प्लानिंग है. इंसान इसी तरह से आगे बढ़ सकता है. ये सिर्फ यूथ के लिए है जो अनमैरिड हैं, का ऐसा ना हो कि हमारे बड़े भी खिजाब लगाकर उस प्रोग्राम में आ जाएं कि हमें भी चाहिए कि हम एक और शादी करना चाहते हैं. कभी कभार ये भी डेंजर होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है फ़ैसला करना कि भी किसको बुलाया जाए, किसी को ना बुलाया जाए. जिन लोगों का अभी निकाह नहीं हुआ है, प्लान बना रहे हैं, उनके लिए हम इन्वाइट करते हैं. इंशाल्लाह आप आइएगा और उस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा. इसलिए कि ईद का दिन है, आज भी ईद का दिन है, 3 दिन ईद चलती है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड द फ्राइडे. इसलिए मैंने हज़रत इब्राहिम का तस्करा किया, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, ज़्यादा नसीहतें ना हो जाए. अभी रिसेंटली मैंने एक निकाह पढ़ा यहीं पर इमाम बारगाह में. जब निकाह ख़त्म हुआ तो एक बुज़ुर्ग मेरे सामने आए और आने के बाद कहा, मौलाना माशाल्लाह. मैंने कहा क्या बात है. कहा आप निकाह अच्छा पढ़ते हैं. ये मेरी भी तारीफ़ हो रही है अंदर से अंदर. आपने कहा अच्छा पढ़ते हैं, आपने एम्फोसाइज किया, 4-5 सेगे आपने पढ़े, नाम लिया, फैमिली का नाम लिया, माशाल्लाह अच्छा निकाह पढ़ते. मैंने कहा इरादा क्या है. तो उन्होंने इरादा क्या, आपके सामने बैठने का दिल करता है. आप निकाह अच्छा पढ़ते हैं तो आपके सामने बैठ, सामने का मतलब वो इन्हें एक और निकाह करने का दिल करता है. मैंने अंदर अंदर ये कहा, उनसे नहीं कहा नाराज़ हो जाएंगे, मैंने अंदर अंदर कहा चचा मैं नमाज मैयत भी अच्छा पढ़ाता हूँ. तो कभी कभार स्पाउस सिलेक्शन में ऐसा ना हो कि लोग खिजाब जो है लगाकर आ जाएं और कहें कि अभी हम स्पाउस चाहिए, हम सिलेक्शन में हासिल होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं. वो लोग आएं, अपने बच्चों को एनकरेज करें. वो अन के हुल आयाम अमीन को पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, ग्रैंड पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, कम्यूनिटी मेम्बर्स की ज़िम्मेदारी है. शादियों के लिए लोगों को तैयार करें, जहनों को तैयार करें और उनको लें, उनको ले आएँ, उनको भेजें. इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी, मैरिज वाली ज़िंदगी, शादी वाली ज़िंदगी बेहतर गुजार सके, ताकि मैरिज कमेटी के लिए बाद में प्रॉब्लम्स ना हो जाएं. एक सजेशन ये है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द मंथ ऑफ ज़िलहिज्जा, गदीर 2-4 दिन बाद गदीर है. इंशाल्लाह बेहतरीन ईद, शियों की सबसे बड़ी ईद, और इस ईद के दिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं. इनके साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल करना हमारे लिए ज़रूरी है. क्या ख्याल कर सकते हैं हम, जश्न है, गिफ्ट्स दीजिएगा बच्चों को और घर वालों को गिफ्ट्स दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुँच जाए इंशाल्लाह. सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो डिस्काउंट दें अपने प्रोडक्ट्स को और ऑफ़र दें. इंशाल्लाह डिस्काउंट के ज़रिए से लोग ख़रीदें और ऑफ़र बनना में इमाम अली